0: dacht dat het meer.
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना।

भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफ बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा। और वो भी देवशीष दास गुप्ता जी की आवाज में, चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, एक और खूबसूरत सा भजन आज के प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे। सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बेला जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, शर्मा जी की आवाज।

और रेडियो SBS के जरिए शर्मा जी की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। अब की बार भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में विक्रम के आवाज में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

0: रेडियो SBS के जरिए चले प्रोग्राम में गोपाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातों शीघ्र उद्धार करने वाली है। पिता पुत्र प्रभु से कहते हैं,

अभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से हमारी तरफ से हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: अनुराधा पोटवाला और साथियों की आवाज में ये सुंदर सा आरती भजन बस आज के ये प्रोग्राम में पेश किए गए और इसी आरती भजन के साथ भजन यात्रा का प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag.
0: Hier Rehnam.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voor exclusieve Indian fashion kleding tegen de hoogste korting ga je naar Muskurata in Den Haag. Met 300 vierkante meter.

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे घी गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लक उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और

सुखविंदर सिंह एन सिल्वा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया।

SBS के जरिए। सुनने वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0332 65 65 60। हरिहरन आपकी बार प्रोग्राम में

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हासिल उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को एक बार फिर से सादर नमस्कार और आदाब। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 11 तारीख जून का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम, और बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को वेलकम। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उन सभी को भी स्वागत किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग खुद मूर्ख आप हर एक को बस पेश किया जा रहा है। हर सुबह की तरह सुबह भी प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक प्रोग्राम जो हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया के कोने कोने में सुनते हैं, और एक प्रोग्राम जिसमें पुरानी नगमे आप हर एक के लिए पेश किया जा रहा है, और एक प्रोग्राम जो सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा सुनते हैं, घर पर हो, नौकरी पर है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, आप सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जबकि 9:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर आप सुनते ही रहें।

कागी पीस की गई तलत महमूद की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना जो पीस किया जा रहा है। फिल्म का नाम है आज का पंछी।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आस का पंछी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। हम आपको ले चलेंगे फिल्म बासी की ओर। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेव्स पे इसके जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी है। अनमोल घड़ी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नूर जहान की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पेश की गई फिल्म का नाम अनमोल धरी है। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलेंगे अब के बार मुकेश जी की ओर। फिल्म का नाम तीसरी कसम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर, और हम आपको ले चलेंगे 1962 का फिल्म का नाम 20 साल बाद।

गाना पेश की गए स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गति पतंग का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म गति पतंग सॉन्ग बाय द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार।

गति पतंग का गीत पेश की गए किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी

0: मोहम्मद रफी की आवाज पर द फिल्म द ट्रेन का गीत पेश की गई। हसरों भी थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना।
1: आओ ओए ट्विंकल ट्विंकल

पुरानी फिल्म पूरब और पश्चिम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। खासतौर पर दलित मनोज कुमार का खास फिल्म है फिल्म पूरब और पश्चिम जो प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में फिल्म संगम की ओर।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म संगम का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। मुकेश और आशा जी की आवाज में अबकी बार ये गाना है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

मुकेश और आशा जी के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम साथी, 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म है, फिल्म साथी, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की ओर, और फिल्म अदालत का गीत पेश होगा तुमसे दूर रहकर।

0: Het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus radio.
3: Sunnewalu Dasbachkar, programma 10 minuten, wij dit hoe je gaat, 3 minuten over 10 studiotijd. Bive Brahespati waar Guru Arkadin. आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं देश विदेश में काफी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज भी मॉरिशियस में दुष्यंत जिंगरे ये हमारा प्रोग्राम सुनते हैं वेलकम आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना प्रोग्राम इस वक्त आप सुनते हैं और खास गाना की गुजारिश भी किया है सुबीर सेन एंड लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है छोटी बहन फिल्म का नाम है

और रेडियो SBS के जरिए गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म छोटी बहन, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना सुबीर सेन एंड लता जी की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं।

आईटी मुकेश एन लता जी की आवाज में। आईटी मुकेश और लता जी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

और फिल्म का नाम पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही राइट नाउ। देनहाग शहर से खास तौर पर विनोद खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। आज भी जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और ये गाना को सुनना चाहते हैं। मुकेश एल लता, पत्थर के सनम, फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास फिल्म।

देनहाग शहर का रहने वाला हूँ। विनोद का खास मांगी हुए गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म CID उसी फिल्म का ये गाना।

हो गया। सीआईडी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। और गाना को मांग करने वाली थी खासतौर पर रोटरडम शहर की ये रहने वाली सबीना। सबीना ये खूबसूरत गाना, काफी पुरानी फिल्म का गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलेंगे एंडहोफ शहर की ओर, और एंडहोफ शहर से खास तौर पर हैंक महाबीर। हैंक महाबीर हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं और एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। मन की आंखें फिल्म का नाम है, 1970 का फिल्म है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में, एंडहोफ शहर का रहने वाला हैंक महाबीर का मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आज के ये प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में खासतौर पर मोहम्मद रफी की आवाज में मन की आंखें फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए एंटोफ शहर से हैंक महावीर। हाय हैंक महावीर, ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैंक महावीर। आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आपको भी खबर किया जा रहा है कि आज से वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल बस शुरू होने वाले है, यानी कि वेका फुटबॉल शुरू होने वाले है। हॉलैंडीज की समय रात्रि में 9 बजे पहला खेल जो होगा, अब हर एक को बस खबर किया जा रहा है और वो भी रात्रि में। पहला खेल जो होने वाले हैं हॉलैंडीज की समय रात्रि में 9 बजे मेक्सिको तेह साउथ अफ्रीका। तो आज से वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल शुरू होने वाले हैं। हॉलैंडीज की समय रात्रि में तकरीबन 9 बजे पहला खेल होगा मेक्सिको स्टेट में, मेक्सिको शहर में। और वो भी मेक्सिको देश में। 4 मिनट बाकी है सुबह सर है 10 बजे में। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश जी की आवाज में। फिल्म धर्म करम उसी फिल्म का एक गाना पेश होगा। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। तो चले शीला की मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी धर्म करम। 1975 का फिल्म, 1975 का फिल्म।

0: आईटी मुकेश और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गए। धर्म करम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रोटरडम नोट की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शीला सरो मीठे की मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में कुछ खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं। न्यूज और न्यूज हेडलाइंस और फर्गेट्स इंफॉर्मेशन देखा जाए कि कहां कहां पर हॉलैंड देश के अंदर में फीलर है, ट्रैफिक है। चले मिलकर सुनते हैं।
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS. Op Radio SBS draaien we de hits waar jij van houdt.
0: Sir, 10:00 program mein 5 minute waited ho chuka hai. Sudwalu aapse guzarish hai, nivedan hai. कि स्टूडियो में अब मत तार कीजिए जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे और मत ऐप कीजिए। ऐप हमेशा आप कर सकते हैं लेकिन गाना आप नहीं मांग कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा लिस्ट जो है बिल्कुल भर गया है। इतना ढेर सा तार ऐप अंदर आते हैं। शुक्रिया सभी को कहा जा रहा है कि आप सभी हमारा साथ देते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में बहुत से तार बहुत से ऐप अंदर आया है। सुनने वालों बस अपना अपना गाना को मांग कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है गाना के लिए अब मत तार कीजिए या तो ऐप कीजिए। तो चले सुन वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर एंड मन्ना डे प्रोग्राम में होगा। हम आपको ले चलेंगे फोरबर्ग शहर की ओर और फोरबर्ग शहर से सोनिया एक खास बड़ी ही पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है। फिल्म का नाम चोरी चोरी। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर गाना को सुनते हैं। गाना का बोल है आजा सनम। फोरबर्ग की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना।

आसरो मीठे की फूड ब्यूरो शहर की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों को काफी पसंद आया है। इसी तरह से मन्ना डे और लता जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी का गीत बस भी इसके गए फूड ब्यूरो की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में बस भी इसके गए है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो के बाहर जब भी हम देखते हैं तो धूप ही धूप निकला हुआ है और आसरो उम्मीद है सोनिया की आपकी शहर में भी इस वक्त धूप ही धूप निकला है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का

Hooghaanstopper. Gouda. Waddingswing. Kapelle aan de IJssel. Rotterdam. Krimpen aan de IJssel. Barendrecht. Ridderkerk. Door, door de Sjerobe. Provincie Zuid-Holland. Met Hamara. Programma hier. Sunai. Dita. Er loopt hier DAB Plus. Dwara. DAB Plus Radio. Kiezer je. अपना घरों में अपना मोटरकार में आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं और साथ ही साथ हॉलैंड देश के बीच में मेडर नीदरलैंड में भी यूट्रेख और दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो द्वारा भी सुनाई देता है। उसी सुनने वालों होते हैं जो इन दिनों DAB प्लस रेडियो की जरिए प्रोग्राम सुनते हैं। गाना जो अबकी बार पेश होगा रूना लैला जी की आवाज में, रूना लैला की आवाज में दिल धर के मैं तुमसे गाना का बोल है। और सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी, नलिनी की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बड़ी ही खूबसूरत गाना रूना लैला जी की आवाज में सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की मांगी हुई गाना दिल धर के।

अरुणा लैला की आवाज में गाना पेश की गई देवघर के मैं तुमसे। खासतौर पर सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरा उम्मीद है नलिनी अपना मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सोनिया भी फोर्ट ब्यूरक शहर से खबर किया है कि वहां पर भी धूप निकला हुआ है, खूबसूरत सुहाना मौसम है। आप सभी रेडियो SBS का बड़े प्यारे प्यारे सुनने वालों हैं और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन गुजारिश है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता समय हो रहा है ये प्रोग्राम खत्म समाप्त करने के लिए, तो आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि स्टूडियो की ओर गाना के लिए मत तार कीजिए या तो ऐप कीजिए। कुछ खट्टी मीठी बातें करता है तो जरूर आप तार कीजिए, लेकिन गाना के लिए आप मत तार कीजिए। आने वाले प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में जरूर फिर से आपको मौका दिया जाएगी। फेल्थोफन शहर से चंद्रा भोला सिंह एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम अभिलाषा। उसी फिल्म का ये गाना बस मांग किया है फेल्थोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह।

अमन मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना भी आपने सुना और अभिलाषा फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। फेल्थोफन शहर की रहने वाली चंद्रा भोला सिंह की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और इस गाना पर भी रिएक्शंस दिया इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। अनुरेश हमेशा हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं और बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ खबर करते रहते हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप पर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत और सुहाना दिन बस भी किया जा रहा है। आठ मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में हॉलैंड देश के अंदर में। हाँ, कहना पड़ता है कि हॉलैंड देश के अंदर में, इसलिए कि हॉलैंड देश के बाहर भी देश विदेश में उसी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। इंडोनेशिया में हम देख रहे हैं सुनने वालों प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सभी को वेलकम। जहां जहां पर भी आप सभी जो भी देश में प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर सुनते ही रहना। सूरीनाम देश में भी सुनने वालों रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। 40 साल से ज्यादा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हॉलैंड देश के अंदर में हर एक की जुबान पर SBS होता है, ऐसे की पूरे लोग की जुबान पर भी SBS काफी बड़ा नाम है। रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में काफी देशों में इसी नाम के साथ रेडियो या टेलीविजन का प्रोग्राम होते हैं। लिम्बर्ग से इरेना ने तार किया है और प्रोग्राम भी सुनते हैं और एक गाना मांग किया है। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी गाना होगा और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना। तो फिल्म हूटगर्स, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है। लिम्बर्ग की रहने वाली इरेना की मांगी हुई गाना।

रेडियो SBS के जरिए गाना जो पेश की गई मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में, खुदगर्स फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लिम्बर की रहने वाली इरेना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। बस इसी तरह से एक आखिरी गाना आज के प्रोग्राम में, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गई और खासतौर पर आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए 21, 22 एंड 23 अगस्त यानी कि 21, 22 और 23 तारीख अगस्त साइड पार्क देनहाग शहर के अंदर में द ईस्ट एंड द ग्रोट्स मिलन होने वाले हैं। मिलन 20 अगस्त यानी कि 21, 22 और 23 तारीख अगस्त साइड पार्क देनहाग शहर के अंदर में द ईस्ट एंड द ग्रोट्स मिलन होने वाले हैं। मिलन साइड पार्क देनहाग सब

नाम धोखा। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम होगा डूब। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अबकी बार गाना पेश किया जा रहा है। हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में फिल्म का नाम धूप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरी हरन और शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा करता हूं कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl। अलका एंड सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाह

इसमें ये कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाग आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 0302656560। से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने

ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

और अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ की आवाज में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकाल कर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पाते, होठ मगर कुछ कह नहीं पाते, अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, कोई है जिसके बगैर हम

देवजीत की आवाज में एल्बम से निकाल कर ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

शमिया एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

आज के प्रोग्राम में पेश किए गए किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना पेश किया गया।

उड़ता हुआ, आज उड़ता हुआ एक पंछी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार

आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है, दिल ही तो है फिल्म का नाम। दिल ही तो है फिल्म का नाम, मुकेश जी की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आइडो फिल्म दिल ही तो है गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार की ओर हम आपको

की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना भी आपने

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में, किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश की गई है।

रेडियो SBS की सर किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Sunnevallo Thames Drive 237, Sher Utrecht se ye program aap sabhi Sunnevallo ki seva mein bas pesh kiya ja raha hai aur aaj ka ye program zarur hai aur zarur sunte hi rehna।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: Kidu Mira, Guria Chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal, Anmol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghayal komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Ik heb je pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ तो फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया।

चली आई चली आई इस द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कौम इश्क समंदर।

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।